मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं लेकिन करीब।

हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरी तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ों। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। इंसाफ का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा बैठा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों, आज शनिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ वीकेंड बस पेश किया जा रहा है। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325656566 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322266611। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन और यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में सुबह सुबह लोसियों का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए।

के लिए सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पीस किया जा रहा है। सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवास में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। अगला भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है ये सुंदर भजन जरूर आप सुनते ही रहना।

अजन यात्रा की खास प्रोग्राम में जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। तो चले प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन की ओर, हरिओम शरण जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है।

आश्रो में थे हरिओम शरण जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में एक सुंदर सा श्री कृष्ण जी का भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

खास भजन यात्रा प्रोग्राम है। रेडियो SBS के जरिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और बहुत सी सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम भी सुनते हैं। चले प्रोग्राम में सुंदर सा राम जी का भजन बस पेश किया जा रहा है। एक सुंदर

सुंदर सा श्री राम जी का भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। सुनने वालों चले प्रोग्राम में विपिन सचदेव की आवाज में। आपकी बार एक सुंदर और अति सुंदर श्री हनुमान जी का भजन पेश किया जा रहा है।

और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्री हनुमान चालीसा की ओर, जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों की सेवा में

श्री हनुमान चालीसा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। चले यहां से प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं आरती भजन की ओर। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ, शुभ वीकेंड के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है। नरेंद्र कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ, शुभ वीकेंड के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है नरेंद्र चंचल की आवाज़ में।

1 augustus hè, सभी को ये नए नए महीना ये नए नए दिन सभी को बधाई हो मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों यहाँ से हम आपको ले चलेंगे पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में यहां से पेश किया जाएगी। लेकिन पुरानी नगमे पेश करने से पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। हम आपको ले चलते हैं पहला गाना की ओर जो आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। जरूर और जरूर आप सुन

और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। अब की बार फिल्म घराना का गीत आप सुनते ही

रेडियो SBS की जरिए मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब की बार ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और वो भी महेंद्र कपूर की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में महेंद्र कपूर जी की आवाज में।

बशरी मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना है पेश की गई आज की प्रोग्राम में। चले एक बार फिर से मोहम्मद रफी एंड लता की ओर हम आपको ले चलते हैं। दिल तेरा दीवाना फिल्म का नाम, मुझे कितना प्यार है तुमसे, फ्रॉम द मूवी दिल तेरा दीवाना, मोहम्मद रफी एंड लता।

ताजी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में दिल तेरा दीवाना फिल्म का नाम था। उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार मुखी सौलता होगा प्रोग्राम में। धरती कहे पुकार की फिल्म

मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आंसर उम्मीद है गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656566। किशोर एंड लता प्रोग्राम में होगा।

इतना प्यार है। किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66-66-11। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी एंड लता की ओर हम आपको ले चलते हैं। जीवन में पिया तेरा साथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे। और अब की बार मोहम्मद रफी एंड लता।

साथ रहे मोहम्मद रफी और खास तौर पर लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी नख में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है आशा भोसले प्रोग्राम में होगा और आशा जी की आवाज में ये गाना।

आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, जाने चमन शोला बदन।

0: परमेश्वरी मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में।
1: प्यार मरता नहीं, दम निकलने से अरमान निकलने।
0: चलिए अबकी बार किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं और किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में ये गाना लता जी की आवाज में आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है पकीसा।

परस मनी का गीत पेश की गई मोहम्मद रफी एंड लता जी की आवाज में। अभी आपने सुना वो जब याद आए, रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

मुखी सौर लता जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं तलत जी की आवाज में आज की प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हम आपको ले चलेंगे अगली बार गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है, द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में। मनोज कुमार का फिल्म पहचान, उसी फिल्म का ये गाना। 1970 का फिल्म है, 1973 का फिल्म। मुकेश जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

गाना पेश की गए पद्मश्री मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। पद्मश्री मोहम्मद रफी और आशा के बाद चले प्रोग्राम में लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। और अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

आवाज में फिखलता आसमान फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में किशोर एंड लता जी की आवाज में फिल्म प्रेम बंधन का गीत पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो SBS की सर ये पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में एक आखिरी और आखिरी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश की गए हैं। सुन वालों घड़ी की ओर देखा जाए इस वक्त 2 मिनट बाकी है सुबह 11 बजे में 12:04 स्टूडियो टाइट हो चुका है। आज शनिवार का दिन है, वीकेंड है और आपको मालूम होना चाहिए आज से अगस्त महीना का शुरुआत हो गई है। आज पहला तारीख है, सभी को ये नए महीना लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। कल रविवार है, कल सुबह 9 बजे से फिर पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर है और जरूर आप सुनते ही रहना।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

और रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में 9 मिनट बैठित हो चुका है सुबह 11 बजकर और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चलिए प्रोग्राम में ये गाना की ओर आज की शनिवार की सुबह की प्रोग्राम में

गाना जो पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए भी आपने सुना। वेबसाइट होता है रेडियो SBS.NL, उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर, पुरानी फिल्म का गीत नई आवाज में, नई संगीत में। एक तारीख अगस्त है, एन ऑफिसस शनिवार का दिन, सात राख। आप सभी सुनने वालों को शुभ वीकेंड, हैव अ नाइस वीकेंड। सभी सुनने वालों जो खासतौर पर स्टूडियो की ओर तार किया है, सभी के तार के लिए शुक्रिया। कुछ बातें हुए, कुछ हंसी मजाक भी हुए।

रेडियो SBS की जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों अभी 12 बजे से लोकल टाइम का प्रोग्राम आप जरूर सुनते ही रहना। चले अभी से एक झलक हम आपको देते हैं लोकल टाइम प्रोग्राम का। पुरानी फिल्म का गीत नई संगीत में

0: बार बोलो एक बार मेरेंगे एडिशन में आपके लिए पेश की गई ये खास गाना जो अभी आपने सुना रेडियो SBS के जरिए। रेडियो SBS का प्रोग्राम शहर यूट्रेक्ट से बस पेश किया जा रहा है और आपको मालूम होना चाहिए कि इसी महीना में हमारा प्रोग्राम एनन फिर तैयार यूट्रेक्ट शहर के अंदर में यूट्रेक्ट शहर से बस पेश किया जा रहा है।
1: Radio SBS wens je een heel fijn weekend.

रेडियो SBS की जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। एक गाना एड फिल्म नूरी या कहिए फिल्म का नाम है नूरी, उसी फिल्म का गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। इट इज इनमिडल्स 13 मिनट ओवर हाफ 12 स्टूडियो टाइट हो चुका है 13 मिनट ओवर हाफ 12। आहिस्ता आहिस्ता हम सभी दोपहर की ओर जा

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में टेम्स रेव 237 शहर उत्तरेख से ये प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चलिए गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। फिल्म ब्रह्मचारी है, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। आसरो उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई। टेम्स रेव 237 शहर उत्तराख से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। एक गाना और होगा और उसके बाद हम आपको ले चलेंगे खबरें की ओर, रिक्लाम न्यूज, मौसमी समाचार और फरकीर्स इनफॉर्मेशन से आपको दिया जाएगी रेडियो SBS के जरिए। हर एक घंटे पर न्यूज होते हैं और न्यूज के साथ मौसमी समाचार और देखा जाए कहां कहां पर हॉलैंड देश के अंदर में ट्रैफिक यानी कि फील होते हैं, यानी कि आ एन वे बे की जरिए फरकेट्स इंफॉर्मेशन भी आपको दिया जा रहा है।

सुनने वालों, आज शनिवार का दिन है, शनिचर का दिन, मतलब होते हैं कि लोकल टाइम का प्रोग्राम हर शनिवार 12 बजे से लेकर के और 2 बजे तक आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सबसे पहले आप सभी सुनने वालों को अनहेल खुद अमिदाख शुभ दोपहर पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का ये खास लोकल टाइम का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। इस वक्त हम देख रहे हैं हॉलैंड देश के अंदर में बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं और हॉलैंड देश के बाहर देश विदेश में भी सभी को वेलकम और लोकल टाइम का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। चले पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस

रेडियो SBS के जरिए लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। अनहेला खुद मेरा रेडियो SBS।

कुछ मैथिली सॉन्ग्स आप हर एक के लिए आज की प्रोग्राम में पेश की गई। पहला गाना था लोकल टाइम का प्रोग्राम का, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई।

सबसे खूबसूरत शहर यूट्रेख्ट शहर से रेडियो SBS का फुल डिजिटल स्टूडियो से ये गाना सुंदर आवाज में सुधीर की आवाज में पेश की गई। आसरो मीठे सुनकर और बेहद पसंद किया है। लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है मोटी बाला भोला सिंह प्रोग्राम में। हाँ है लखुदा मेरा रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। आपके साथ हजारों हजारों सुनने वालों बस प्रोग्राम फॉलो करते हैं दुनिया की कोने कोने में।

ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गए है। सुडवालो स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। चलिए अब की बार ये गाना की ओर। पुरानी फिल्म का गीत है, लोकल में आपके लिए पेश किया जा रहा है रेडियो एसपीएस की जरिए लोकल टाइम प्रोग्राम में।

हमारी सभी सुन वालों को शुभ दोपहर अनहेल खुदामिदा जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं बहुत से कॉम्प्लीमेंट्स अंदर आते हैं आज के लोकल टाइम के प्रोग्राम के बारे में खूबसूरत गाने नखमे जो पेश किया जा रहा है जैसे कि ये गाना

0: हर शनिवार 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। हमारा वेबसाइट की जरिए भी प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए आप सुन सकते हैं। चलिए एक ट्विस्ट मेटली की ओर।
1: अरे

कैनबस भी इसकी गेम। आज की इस खास लोकल टाइम का प्रोग्राम में सुन वालू चले प्रोग्राम में राजेश शिव नंदन की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो अब की बार पेश किया जा रहा है आज की इस लोकल टाइम की प्रोग्राम में रेडियो SBS की जरिए

पेश किया जा रहा है और लोकल टाइम का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो SBS की जरिए। मिस्टर सागर मलिक प्रोग्राम में फिल्म त्रिशूल का एक खास गाना पेश किया जा रहा है, मोहब्बत बड़े काम की चीज है।

लोकल टाइम प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। तकरीबन 2 बजे तक ये प्रोग्राम पेश होगा और हमारा प्रोग्राम भी तकरीबन 2 बजे तक पेश किया जाएगी आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में मिस्टर राहुल की ओर, यार दीवाना होता है, उसके बाद पन्ना की तमन्ना।

ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए। सुनने वालों अभी अभी हमने देखा कि हजारों हजारों सुनने वालों इस वक्त दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। मिस्टर रोब

कि आवास में गाना बज प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आपको मालूम होना चाहिए वही हिट और हॉट प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा हर रविवार को पेश किया जा रहा है 3 बजे से लेकर के और 6 बजे तक। ग्लेन रामबाली के जरिए बैठक गाना मास्टर ग्लेन रामबाली के जरिए हर इतवार वही हिट

0: और इसी तरह से प्रशांत प्रशांत की आवाज में ये गाना पेश की गई टुंग टुंग बराफू। हमारी बहुत सी सुनने वालों स्टूडियो की ओर तार कर रहे हैं, अपना अपना कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि इतने खूबसूरत गाने प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और वो भी रेडियो SBS के जरिए। चलिए प्रोग्राम में अब की बार
1: अभी दे दो
0: ये गाना
1: है तो अभी

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम को भी आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी। सागर मलिक, रोबर्टो और साथियों की आवाज।

गए सागर मलिक रोबर्टो और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना। लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस की जरिए। बहुत सी सुनने वालों बस

गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में शनिवार का दिन है, वीकेंड है और रेडियो वेस्ट भी इसका प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

चले प्रोग्राम में प्रशांत खन्ना और पापू मैन की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

परेशान खन्ना और पापा मैन की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार लकी सरन की

रेडियो SBS के जरिए लकी सरन की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सुनने वालों लोकल टाइम प्रोग्राम का एक आखिरी और आखिरी गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में और इसी गाना के साथ

कल सुबह ठीक 8 बजे मैं आप सभी सुनने वालों से बस फिर मिलूंगा। तब तक के लिए हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा मुझे तार कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर 0325656560 पर। आप लोगों से हम फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस वीकेंड। कल सुबह ठीक 8 बजे मैं आप सभी सुनने वालों से फिर मिलूंगा।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आर जे अंशुलि करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशुलि करमलाल, दी फहार्ते वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। वेल रिएक्शन कैन इट ऑल्टाइड सर्फ मना द वेबसाइट www.radiosbs.nl।

आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। आपने सुना कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म हम दिल दे चुके सनम से, और अब आप सुनिए एक पहेली लीला से तुलसी कुमार की आवाज में, मेरे सैया सुपरस्टार।

इस पल मैं हूँ या तुम हो, गज़ों दो सोनू निगम है श्रेया घोषाल, बस और द फिल्म आजा नच ले, एंड और द फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस कम्स गज़ों दो शारदा, ले जा मेरा दिल।

आते आते आ गए पास हम, जाते जाते ले गए तुम सनम, मेरी नींदे मेरे सारे सपने, ले चलो मुझको भी साथ अपने, तुम न मारो तो तुमको कसम, was uit de film Chori Chori en is gezongen door Elka Yachnik en Babu Supriyo. Gaan we dan verder met uit de film Chehre, Rang Darya.

जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। इसका सॉन्ग अदूर अमित मिश्रा एंड अभिजीत एंक्वाम द फिल्म जवाने जाने मन एंड आर द फिल्म अभिमान कॉम्थ सॉन्ग अदूर लता मंगेशकर तेरी बिंदिया रे।

गली गली में फिरता है, इस सॉन्ग दो अलका याचनिक एंड पप्पी लहरी एंड क्वाम आउट द फिल्म त्रिदेव एंड आउट द फिल्म हलियाली और रास्ता कॉम्त बोल मेरे तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता।

0: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का दिल दीवाना लगता है, kwam uit de prachtige film Dhadkan van Akshay Kumar, Shilpa Shetty en Sunil Shetty. Dit liedje is gezongen door Nusrat Fateh Ali Khan. Gaan we verder met Tequila uit de film Bala.
1: Bala bhaiya ki subah ki khushi mein pesh hai Sony Band ki khaas peshkash. Suniye.

जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले।

फिल्म यादें से आपने सुना उदित नारायण और आशा भोसले की आवाज में जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले। और अब आप सुनिए 14 फेरे से है तू।

टाइटल सॉन्ग फिल्म दीवाने का आपने सुना कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याचनिक की आवाज में। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म एहसास से। तुमसे मिलकर हुआ है एहसास एक नया नया।

आप हमारी जान बन गए। अज़ीज़ कौर और मिथुन की आवाज़ में आपने सुना खुदा हाफिज से। अब आप सुनिए कृष्णा कोतिश से। शान और सुनिधि चौहान की आवाज़ में आप सुनिए बिंदास आहा।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में, मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। इसके सॉन्ग दो लता मंगेशकर एन कॉम्ट आउट द फिल्म वक्त। गाँव दा फेदर मैट आउट द फिल्म गुंजन सक्सेना। गजाओं दो रेखा भारतवाज कॉम दोरी टूट गईया।

मेरे चंदा मेरे नन्हे, आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आखिरी खत से, और अब आप सुनिए अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में। चौधवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ये बेहतरीन गाना आप सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

कितना प्यार करते हैं तुमको सनम, मेरे दिल से पूछो ना। आपने सुना फिल्म बनारस से हिमेश रेशमिया की आवाज में। और अब आप सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में अगला गाना प्रोग्राम रेडियो SBS का। फिल्म धूम 2 से आप सुनिए क्रेजी क्यारे।

मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है वाज आउट द फिल्म आशिकी एंड इज गेजोंग डोर उदित नारायण एंड अनुराधा पौडवाल. Het volgende liedje in het programma Geet om Kelleher is gezongen door Nawazuddin Siddiqui. Uit de film Bole Churia komt Swaggy Churia.

मुझे साजन के घर जाना है, इसका सॉन्ग दूर अलका याचनिक, सोनू निगम एंड जसपिंदर नरूला एंक वाम आई द फिल्म लज्जा. Het volgende liedje in het programma Giet Onkelher via Radio SBS is gezongen door Sunidhi Chauhan en KK. Uit de film Basik Pal komt Ashk Bhi Muskuraye.